डक्टर, मैले उसको विल पावर जोगाउन धेरै ट्राई गरिसकेँ, म हार खाइसकेँ। आई एम सो सरी डक्टर।

0: हाय बेबी,
1: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रहे मतलब?
1: Means I'm not coming back. I can't.
0: But I love you.
1: जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूँ।

सॉरी सर, वो बॉटल जिस पे भी रुकती है उसे गाना पड़ता है, बट इट्स ओके, आप तो हो।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: इतनी जल्दी
2: नजदीक आओ. मेरा नंबर डायरेक्टली बात करना. डैड को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके, वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्को की तरह बिहेव मत करना. आई कैरी पेपर स्प्रे.
1: ओके.
2: बाय द वे नेहा,

0: सिलोठाउँ इन्फोटेक गोर्खा, गुणस्तरीय सामान, उचित मूल्य र उत्कृष्ट सेवा, यही नै हाम्रो प्रतिबद्धता।
1: इन्फोटेक गोर्खा प्रविधिसँग तपाईँको विश्वास। गोर्खा नगरपालिका 6 हरमटारी चोक गोर्खा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98560 40172।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2470, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670 मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।
2: चोइस एफएम टाइम चेक
3: अहिले दिउँसोको 2 बजेको छ।
2: इट्स 2 पीएम।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: शिव दर्शन फिल्म्स प्राली सगौरव प्रस्तुत गर्दछ।